0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, अपनों के संग रहने की चाहत हर मानव हृदय की एक गहरी तमन्ना है। हम सदैव अपनों के संग रहने की चाह रखते हैं। हम उनके निकट और करीब रहने की दिलो तमन्ना रखते हैं, जिन्हें हम सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। इस भांति हमारा अपनों के पास उनके संग रहना एक तरह से अपने में पूर्णता की अनुभूति लाती है, जहां हम अपने को किसी भी प्रकार के डर, भय या संकोच से मुक्त पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपनों के संग रहना हमें इस बात की निश्चितता और विश्वास दिलाती है कि कुछ अनहोनी के होने पर भी हम अपने प्रिय जनों के द्वारा देख रेख किए जाएंगे। वे हमारी सुध लेंगे और हमारी सेवा शुश्रूषा करेंगे। श्रोताओं, आज माता कलिसिया प्रभु येसु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण का महोत्सव मनाती है। इस महापर्व हेतु निर्धारित आराधना विधि चिंतन पाठ हमें अपने जीवन में इस सच्चाई को देखने, पहचानने और उनमें बने रहने का निमंत्रण देता है कि पुनर्जीवित येसु सदैव हमारे जीवन में हमारे संग रहते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की। क्या हम अपने उस पुनर्जीवित मुक्तिदाता येसु ख्रिस्त का अपने संग होने का एहसास करते हैं? उनकी उपस्थिति की निशानी हमारे लिए क्या होती है? हम उन्हें कैसे अपने दैनिक जीवन की घटनाओं में देखते पाते और उनके संग अपने संबंध की घनिष्ठता में प्रवेश करते हैं?
1: तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां येसु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने येसु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब येसु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें सचमुच में जीवित प्रभु येसु ख्रिस्त की उपस्थिति को देखने में, उन्हें अपने दैनिक जीवन के कार्यों में पहचानने को मदद करें, जिससे हम उनके द्वारा दिए गए अपने कार्यों को उनकी महिमा और स्तुति हेतु कर सकें। श्रोताओं, प्रेरित चरित का प्रथम अध्याय हमारे लिए एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थियोफिलुस की चर्चा करता है, जिन्हें येसु के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लिखा जाता है, जिसे उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते वक्त स्वर्ग में आरोहित किए जाने तक विभिन्न रूपों में पूरा किया। उन्हें इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि येसु ने अपने शिष्यों को, जिन्हें उन्होंने चुना, अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। इतना ही नहीं, येसु अपने शिष्यों को यरूशलेम में रुककर पिता ईश्वर द्वारा भेजे जाने वाले सत्य के आत्मा की प्रतीक्षा करने का निर्देश देते हैं, जिससे वे उस आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। श्रोताओं, यह हमारे लिए इस बात का साक्ष्य देता है कि येसु ने पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के कार्यों को पूरा किया, जिसके लिए वे पिता की ओर से भेजे गए थे। अपने पुनरुत्थान के उपरांत अपने शिष्यों को कई बार दिखाई दिए और उनके संग रहते हुए उन्हें स्वयं अपनी आत्मा से पोषित कर अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। येसु ने जिस भांति अपने पिता के कार्यों को पूरा किया, वे शिष्यों को और हमें भी अपने कार्यों में पिता की इच्छा पूरा करने को भेजते हैं। श्रोताओं, इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन के सार और दुनिया में अपने भेजे जाने के रहस्य को समझने में मदद करता है। संत पौलुस हमें प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि में अपने बुलाए जाने के कारण को मन की आंखों से देखने का आह्वान करते हैं। मृतकों में पुनर्जीवित येसु, जो स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान हैं, हम अपनी आशा में संतों के संग उसी विरासत के अधिकारी होने को बुलाए गए हैं, जो हमें उन कार्यों के निष्पादन हेतु आह्वान करता है जिसे स्वयं येसु ख्रिस्त ने पृथ्वी के जीवन में पूरा किया। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमारे लिए प्रथम और द्वितीय पाठ को संयुक्त रूप में समझने को मदद करता है। यीशु ख्रिस्त स्वर्ग और पृथ्वी पर मिले अपने अधिकार के कारण हमें राष्ट्रों में ज्योति की भांति भेजते हैं। इस भेजे जाने में हम स्वयं यीशु के भेजे जाने को देखते हैं, जो सारी मानव जाति की मुक्ति हेतु हमारे लिए उनकी प्रेरिताई को व्यक्त करता है। अपनी प्रेरिताई में यीशु अपने दुखभोग और क्रूस मरण के द्वारा सारी मानवता को पाप और मृत्यु से बचाया और नया जीवन प्रदान किया। यह नया जीवन हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा द्वारा प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप हम त्रित्व में ईश्वर की संतान बनते और उस अनंत जीवन के भागीदार होते हैं, जिसे यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए पुनरुत्थान में प्रदान किया है। अतः हमें जो जीवनदायी उपहार, प्रेम का उपहार यीशु ख्रिस्त की शिक्षा में मिली है, हमें उसी शिक्षा को दूसरों के संग साझा करने को भेजा जाता है। शिष्यों के भेजे जाने में यीशु उन्हें कहते हैं, मैंने जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखाओ। श्रोताओं, यहाँ हम कलीसिया के एक विशेष गुण को देखते हैं, अर्थात कलीसिया जो ख्रिस्त का अनुसरण करती है अपने में दूसरों के बीच जाने को कही जाती है, वह अपने से बाहर जाने को आमंत्रित की जाती है, जिससे वह दूसरों के लिए जीवन का कारण बने। अतः ख्रिस्त विश्वासियों के रूप में हम ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए बांटे जाने को कहते हैं। हम इसे यीशु के वचनों को घोषित करते हुए और अपने कार्यों के माध्यम साक्ष्य देते हुए पूरा करते हैं। ईश्वर ने हमें मुक्ति प्रदान की है और हम उसी मुक्ति को अपने में सीमित रखने को नहीं कहे जाते, बल्कि उसे उनके संग साझा करने को भेजे जाते हैं जिन्हें ईश्वरीय प्रेम की जरूरत है। श्रोताओं, हम अपने इस कार्य में सदैव इस बात को याद रखें कि यह हमारा कार्य नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वर का कार्य है जिन्होंने हमें जीवन दिया है। और इसलिए यीशु हमें कहते हैं कि याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हमारे दैनिक जीवन के कार्य, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, यदि हम उन्हें इस मनोभाव से करते हैं कि यह हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य है, जिसे हम अपने लिए नहीं वरन उसकी स्तुति और महिमा के लिए करते हैं, तो हम त्रित्वमय ईश्वर को अपने जीवन, वचन और कर्म में वहन करते हैं। आइए हम त्रित्वमय ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें अपने जीवन में इस रहस्य को समझने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम उनकी निकटता का अनुभव सदैव करते हुए उनकी महिमा के लिए अपने कार्यों को पूरा कर सकें।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। उत्तरी इटली के जेनेवा महाधर्म प्रांत के करीब 1,000 कैथोलिक युवा रोम की तीर्थ यात्रा पर हैं और आज वाटिकन के संत दमासो प्रांगण में संत पापा लियो 14वें ने उनसे मुलाकात की और मसीह के पीछे चलने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। ये युवा दृढ़करण संस्कार लेने की तैयारी कर रहे हैं, जो दीक्षा के संस्कारों को पूरा करता है और बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को पवित्र आत्मा के उपहार से सील करता है। संत पापा लियो ने कहा, हर धर्माध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी खुशियों में से एक दृढ़करण संस्कार देने का मौका है, क्योंकि यह सच में पवित्र आत्मा का उपहार है। उन्होंने कहा, यह संस्कार लेना बहुत सुंदर है, क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरता हमें उत्साह, ताकत और यीशु मसीह के पीछे चलने, हमेशा प्रभु को हाँ कहने और ऐसी दुनिया में विश्वास के साथ जीने की क्षमता देती है, जो अक्सर हमें प्रभु से दूर ले जाना चाहती है। उन्होंने बताया कि अगला रविवार 24 मई पेंतेकोस्त रविवार है, जब कलीसिया पहले शिष्यों के अनुभव को याद करती है, जिन्हें पवित्र आत्मा मिली और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करना शुरू किया। संत पापा ने कहा कि हम अकेले विश्वास को नहीं जीते, हम इसे एक साथ जीते हैं और दोस्ती एवं समुदाय में ये रिश्ते बनाना यीशु के शिष्यों के तौर पर मजबूती से जीने का एक तरीका है। अंत में संत पापा ने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे पवित्र आत्मा की पूरी कृपा पाने के इस पल का आनंद लें और इसे अपनी पूरी जिंदगी बनाए रखें। उन्होंने कहा, यह बहुत जरूरी है कि आप में से हर कोई प्रभु से यह वादा करे कि आप सच में उनके दोस्त, उनके शिष्य और उनके मिशनरी बने रहना चाहते हैं और आप विश्वास में मजबूती से बने रहना चाहते हैं। और आज संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में कई इटालियन बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने समाज में बैंकों और जमा धन संस्थानों की भूमिका पर बातें की। उन्होंने कहा, आपके फाउंडेशन की भावना सभी को खासकर यह याद दिलाती है कि किसी बैंक में सबसे पहले पूंजी नहीं बल्कि लोग आते हैं और इन नंबरों के पीछे महिलाएं, पुरुष, परिवार होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे माहौल में जब वित्तीय साधन का हाई लेवल कंप्यूटराइजेशन आपसी रिश्तों में मीडिएशन से ज्यादा मुश्किल और बनावटी तरीकों को लागू कर रहा है, आप इंसानी ध्यान की एक महान परंपरा के वारिस यह पक्का करने के लिए बुलाए गए हैं कि जो लोग आपकी सेवा लेते हैं वे एल्गोरिदम सिस्टम की ठंडक में अकेला महसूस न करें। उन्होंने कहा कि इन सिस्टम के पीछे आज भी पहले की तरह ऐसे लोग होने चाहिए जो सुनने के लिए तैयार हों और अच्छा करने के लिए तैयार हों। संत पापा ने कहा, पूंजी का एक जगह जमा होने से स्वार्थी जमाखोरी हो सकती है, जो असमानता और गरीबी का कारण बन सकती है। संत पापा ने चेतावनी दी और बैंकिंग संस्थाओं से एकजुटता की नैतिकता और सुनने की इच्छा रखने की अपील की। और स्पेन के बाद संत पापा लियो 14वें की प्रेरित यात्रा एक बार फिर एक यूरोपीय देश फ्रांस में होगी। आज 16 मई को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि देश के राष्ट्राध्यक्ष और कलीसिया के अधिकारियों एवं यूनेस्को के महानिदेशक के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए संत पापा लियो 14वें 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा करेंगे और उस संगठन के मुख्यालय का दौरा करेंगे। बयान में कहा गया कि यह संत पापा लियो की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले वे तुर्की और लेबनान, मोनाको की रियासत और अफ्रीका की यात्रा कर चुके हैं। स्पेन की यात्रा 6 से 12 जून तक करेंगे और शुक्रवार 15 मई को संत पेत्रुस महागिरजा घर में संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल पॉल एमिल शेरिंग के अंतिम संस्कार की अध्यक्षता की, जिनकी 12 मई को 79 साल की उम्र में मौत हो गई। उन्होंने दिवंगत स्विस कार्डिनल के दशकों तक परम धर्मपीठ के प्रति निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें ईश्वर की दया पर छोड़ दिया।
अपने प्रवचन में संत पापा ने उस महान और पवित्र पल पर विचार किया जिसमें कार्डिनल अब प्रभु के सामने इस जीवन में किए गए अच्छे कामों का इनाम और इंसानी कमजोरी से हुई कमियों के लिए माफी के लिए खड़े हैं। संत पापा लियो ने कार्डिनल शेरिंग को कलीसिया का एक समर्पित सेवक बताया जिन्होंने अपना आधा से ज्यादा जीवन परम धर्मपीठ की राजनयिक सेवा में बिताया। दुनिया भर में परम धर्मपीठ के प्रतिनिधि और वाटिकन राज्य सचिवालय में अपनी सेवा दी। संत पापा ने कहा कि हालांकि अक्सर लोगों की नजरों से दूर रहकर उन्होंने सेवा की, लेकिन उनकी सेवा ने ईश्वर के राज्य को बढ़ाने में बिना थके योगदान दिया है। संत पापा ने एक पुरोहित और एक राजनयिक दोनों के तौर पर स्वर्गीय कार्डिनल के काम की तारीफ की और बताया कि कैसे उन्होंने लोगों के बीच मेलजोल बढ़ाने और स्थानीय कलीसियाओं एवं परम धर्म पीठ के बीच मेलजोल को मजबूत करने के लिए धैर्य और त्याग के साथ काम किया। उधर विश्व सामाजिक संचार दिवस को मनाने के लिए संचार विभाग ने गुरुवार 21 मई को परम धर्मपीठीय उर्बान विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। विश्व दिवस का विषय इंसानी आवाजों और चेहरों को बचाना संत पापा लियो के संदेश को दिखाता है और उस भावना को दिखाता है जिसमें आयोजक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लोगों, समुदाय और देशों की जिंदगी पर इसके असर पर बातचीत करने के लिए अकादमी, संस्थानीय प्रतिनिधियों, हाईटेक एक्सपर्ट और पत्रकारों को बुलाया है। इसका उद्देश्य संत पापा की इस बात के जवाब में सोच विचार और बातचीत का एक पल होना है कि संचार के तोहफे को इंसानियत की सबसे गहरी सच्चाई के तौर पर संजो कर रखें। उधर यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास 13 और 14 मई को यूक्रेन में रूस की खास तौर पर तेज बमबारी के बारे में बताया और मानवतावादी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि उन पर जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि लोगों को मदद ना मिले। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: जिन्हें हम सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं। इस भांति हमारा अपनों के पास उनके संग रहना एक तरह से अपने में पूर्णता की अनुभूति लाती है, जहां हम अपने को किसी भी प्रकार के डर, भय या संकोच से मुक्त पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपनों के संग रहना हमें इस बात की निश्चितता और विश्वास दिलाती है कि कुछ अनहोनी के होने पर भी हम अपने प्रिय जनों के द्वारा देख रेख किए जाएंगे। वे हमारी सुध लेंगे और हमारी सेवा शुश्रूषा करेंगे। श्रोताओं, आज माता कलिसिया प्रभु येसु ख्रिस्त के स्वर्गारोहण का महोत्सव मनाती है। इस महापर्व हेतु निर्धारित आराधना विधि चिंतन पाठ हमें अपने जीवन में इस सच्चाई को देखने, पहचानने और उनमें बने रहने का निमंत्रण देता है कि पुनर्जीवित येसु सदैव हमारे जीवन में हमारे संग रहते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने शिष्यों से प्रतिज्ञा की। क्या हम अपने उस पुनर्जीवित मुक्तिदाता येसु ख्रिस्त का अपने संग होने का एहसास करते हैं? उनकी उपस्थिति की निशानी हमारे लिए क्या होती है? हम उन्हें कैसे अपने दैनिक जीवन की घटनाओं में देखते, पाते और उनके संग अपने संबंध की घनिष्ठता में प्रवेश करते हैं?
1: तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां येसु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने येसु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब येसु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें सचमुच में जीवित प्रभु येसु ख्रिस्त की उपस्थिति को देखने में, उन्हें अपने दैनिक जीवन के कार्यों में पहचानने को मदद करें, जिससे हम उनके द्वारा दिए गए अपने कार्यों को उनकी महिमा और स्तुति हेतु कर सकें। श्रोताओं, प्रेरित चरित का प्रथम अध्याय हमारे लिए एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थियोफिलुस की चर्चा करता है, जिन्हें येसु के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में लिखा जाता है, जिसे उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते वक्त स्वर्ग में आरोहित किए जाने तक विभिन्न रूपों में पूरा किया। उन्हें इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि येसु ने अपने शिष्यों को, जिन्हें उन्होंने चुना, अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। इतना ही नहीं, येसु अपने शिष्यों को यरूशलेम में रुककर पिता ईश्वर द्वारा भेजे जाने वाले सत्य के आत्मा की प्रतीक्षा करने का निर्देश देते हैं, जिससे वे उस आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। श्रोताओं, यह हमारे लिए इस बात का साक्ष्य देता है कि येसु ने पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के कार्यों को पूरा किया, जिसके लिए वे पिता की ओर से भेजे गए थे। अपने पुनरुत्थान के उपरांत अपने शिष्यों को कई बार दिखाई दिए और उनके संग रहते हुए उन्हें स्वयं अपनी आत्मा से पोषित कर अपने कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। येसु ने जिस भांति अपने पिता के कार्यों को पूरा किया, वे शिष्यों को और हमें भी अपने कार्यों में पिता की इच्छा पूरा करने को भेजते हैं। श्रोताओं, इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन के सार और दुनिया में अपने भेजे जाने के रहस्य को समझने में मदद करता है। संत पौलुस हमें प्रज्ञा और आध्यात्मिक दृष्टि में अपने बुलाए जाने के कारण को मन की आंखों से देखने का आह्वान करते हैं। मृतकों में पुनर्जीवित येसु जो स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान है, हम अपनी आशा में संतों के संग उसी विरासत के अधिकारी होने को बुलाए गए हैं, जो हमें उन कार्यों के निष्पादन हेतु आह्वान करता है जिसे स्वयं येसु ख्रिस्त ने पृथ्वी के जीवन में पूरा किया। श्रोताओं, आज का सुसमाचार जिसका श्रवण हमने किया, हमारे लिए प्रथम और द्वितीय पाठ को संयुक्त रूप में समझने को मदद करता है। येसु ख्रिस्त स्वर्ग और पृथ्वी पर मिले अपने अधिकार के कारण हमें राष्ट्रों में ज्योति की भांति भेजते हैं। इस भेजे जाने में

हम स्वयं यीशु के भेजे जाने को देखते हैं, जो सारी मानव जाति की मुक्ति हेतु हमारे लिए उनकी प्रेरिताई को व्यक्त करता है। अपनी प्रेरिताई में यीशु अपने दुख भोग और क्रूस मरण के द्वारा सारी मानवता को पाप और मृत्यु से बचाया और नया जीवन प्रदान किया। यह नया जीवन हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा द्वारा प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप हम त्रित्व में ईश्वर की संतान बनते और उस अनंत जीवन के भागीदार होते हैं, जिसे यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए पुनरुत्थान में प्रदान किया है। अतः हमें जो जीवनदायी उपहार, प्रेम का उपहार यीशु ख्रिस्त की शिक्षा में मिली है, हमें उसी शिक्षा को दूसरों के संग साझा करने को भेजा जाता है। शिष्यों के भेजे जाने में यीशु उन्हें कहते हैं, मैंने जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखाओ। श्रोताओं, यहाँ हम कलीसिया के एक विशेष गुण को देखते हैं, अर्थात कलीसिया जो ख्रिस्त का अनुसरण करती है अपने में दूसरों के बीच जाने को कही जाती है, वह अपने से बाहर जाने को आमंत्रित की जाती है, जिससे वह दूसरों के लिए जीवन का कारण बने। अतः ख्रिस्त विश्वासियों के रूप में हम ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए बांटे जाने को कहते हैं। हम इसे यीशु के वचनों को घोषित करते हुए और अपने कार्यों के माध्यम साक्ष्य देते हुए पूरा करते हैं। ईश्वर ने हमें मुक्ति प्रदान की है और हम उसी मुक्ति को अपने में सीमित रखने को नहीं कहे जाते, बल्कि उसे उनके संग साझा करने को भेजे जाते हैं जिन्हें ईश्वरीय प्रेम की जरूरत है। श्रोताओं, हम अपने इस कार्य में सदैव इस बात को याद रखें कि यह हमारा कार्य नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वर का कार्य है जिन्होंने हमें जीवन दिया है। और इसलिए यीशु हमें कहते हैं कि याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हमारे दैनिक जीवन के कार्य, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों, यदि हम उन्हें इस मनोभाव से करते हैं कि यह हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य है, जिसे हम अपने लिए नहीं वरन उसकी स्तुति और महिमा के लिए करते हैं, तो हम त्रित्वमय ईश्वर को अपने जीवन, वचन और कर्म में वहन करते हैं। आइए हम त्रित्वमय ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें अपने जीवन में इस रहस्य को समझने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम उनकी निकटता का अनुभव सदैव करते हुए उनकी महिमा के लिए अपने कार्यों को पूरा कर सकें।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। उत्तरी इटली के जेनेवा महाधर्म प्रांत के करीब 1000 कैथोलिक युवा रोम की तीर्थ यात्रा पर हैं और आज वाटिकन के संत दमासो प्रांगण में संत पापा लियो 14वें ने उनसे मुलाकात की और मसीह के पीछे चलने की उनकी इच्छा को बढ़ावा दिया। ये युवा दृढ़करण संस्कार लेने की तैयारी कर रहे हैं जो दीक्षा के संस्कारों को पूरा करता है और बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति को पवित्र आत्मा के उपहार से सील करता है। संत पापा लियो ने कहा, हर धर्माध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी खुशियों में से एक दृढ़करण संस्कार देने का मौका है क्योंकि यह सच में पवित्र आत्मा का उपहार है। उन्होंने कहा, यह संस्कार लेना बहुत सुंदर है क्योंकि पवित्र आत्मा की भरपूरता हमें उत्साह, ताकत और यीशु मसीह के पीछे चलने, हमेशा प्रभु को हाँ कहने और ऐसी दुनिया में विश्वास के साथ जीने की क्षमता देती है जो अक्सर हमें प्रभु से दूर ले जाना चाहती है। उन्होंने बताया कि अगला रविवार 24 मई पेंतेकोस्त रविवार है, जब कलीसिया पहले शिष्यों के अनुभव को याद करती है जिन्हें पवित्र आत्मा मिली और उन्होंने परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करना शुरू किया। संत पापा ने कहा कि हम अकेले विश्वास को नहीं जीते, हम इसे एक साथ जीते हैं और दोस्ती एवं समुदाय में ये रिश्ते बनाना यीशु के शिष्यों के तौर पर मजबूती से जीने का एक तरीका है। अंत में संत पापा ने युवाओं को प्रोत्साहित किया कि वे पवित्र आत्मा की पूरी कृपा पाने के इस पल का आनंद लें और इसे अपनी पूरी जिंदगी बनाए रखें। उन्होंने कहा, यह बहुत जरूरी है कि आप में से हर कोई प्रभु से यह वादा करे कि आप सच में उनके दोस्त, उनके शिष्य और उनके मिशनरी बने रहना चाहते हैं और आप विश्वास में मजबूती से बने रहना चाहते हैं। और आज संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में कई इटालियन बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों से मुलाकात की और उन्होंने समाज में बैंकों और जमा धन संस्थानों की भूमिका पर बातें की। उन्होंने कहा, आपके फाउंडेशन की भावना सभी को खासकर यह याद दिलाती है कि किसी बैंक में सबसे पहले पूंजी नहीं बल्कि लोग आते हैं और इन नंबरों के पीछे महिलाएं, पुरुष, परिवार होते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे माहौल में जब वित्तीय साधन का हाई लेवल कंप्यूटराइजेशन आपसी रिश्तों में मीडिएशन से ज्यादा मुश्किल और बनावटी तरीकों को लागू कर रहा है, आप इंसानी ध्यान की एक महान परंपरा के वारिस यह पक्का करने के लिए बुलाए गए हैं कि जो लोग आपकी सेवा लेते हैं वे एल्गोरिदम सिस्टम की ठंडक में अकेला महसूस न करें। उन्होंने कहा कि इन सिस्टम के पीछे आज भी पहले की तरह ऐसे लोग होने चाहिए जो सुनने के लिए तैयार हों और अच्छा करने के लिए तैयार हों। संत पापा ने कहा, पूंजी का एक जगह जमा होने से स्वार्थी जमाखोरी हो सकती है जो असमानता और गरीबी का कारण बन सकती है। संत पापा ने चेतावनी दी और बैंकिंग संस्थाओं से एकजुटता की नैतिकता और सुनने की इच्छा रखने की अपील की। और स्पेन के बाद संत पापा लियो 14वें की प्रेरित यात्रा एक बार फिर एक यूरोपीय देश फ्रांस में होगी। आज 16 मई को वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि देश के राष्ट्राध्यक्ष और कलीसिया के अधिकारियों एवं यूनेस्को के महानिदेशक के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए संत पापा लियो 14वें 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा करेंगे और उस संगठन के मुख्यालय का दौरा करेंगे। बयान में कहा गया कि यह संत पापा लियो की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रा होगी। इससे पहले वे तुर्की और लेबनान, मोनाको की रियासत और अफ्रीका की यात्रा कर चुके हैं। स्पेन की यात्रा 6 से 12 जून तक करेंगे और शुक्रवार 15 मई को संत पेत्रुस महागिरजाघर में संत पापा लियो 14वें ने कार्डिनल पॉल एमिल शेरिंग के अंतिम संस्कार की अध्यक्षता की, जिनकी 12 मई को 79 साल की उम्र में मौत हो गई। उन्होंने दिवंगत स्विस कार्डिनल के दशकों तक परम धर्मपीठ के प्रति निष्ठावान सेवा के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें ईश्वर की दया पर छोड़ दिया।
अपने प्रवचन में संत पापा ने उस महान और पवित्र पल पर विचार किया जिसमें कार्डिनल अब प्रभु के सामने इस जीवन में किए गए अच्छे कामों का इनाम और इंसानी कमजोरी से हुई कमियों के लिए माफी के लिए खड़े हैं। संत पापा लियो ने कार्डिनल शेरिंग को कलीसिया का एक समर्पित सेवक बताया जिन्होंने अपना आधा से ज्यादा जीवन परम धर्म पीठ की राजनयिक सेवा में बिताया। दुनिया भर में परम धर्म पीठ के प्रतिनिधि और वाटिकन राज्य सचिवालय में अपनी सेवा दी। संत पापा ने कहा कि हालांकि अक्सर लोगों की नजरों से दूर रहकर उन्होंने सेवा की, लेकिन उनकी सेवा ने ईश्वर के राज्य को बढ़ाने में बिना थके योगदान दिया है। संत पापा ने एक पुरोहित और एक राजनयिक दोनों के तौर पर स्वर्गीय कार्डिनल के काम की तारीफ की और बताया कि कैसे उन्होंने लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाने और स्थानीय कलीसियाओं एवं परम धर्म पीठ के बीच मेल जोल को मजबूत करने के लिए धैर्य और त्याग के साथ काम किया। उधर विश्व सामाजिक संचार दिवस को मनाने के लिए संचार विभाग ने गुरुवार 21 मई को परम धर्मपीठ उर्बान विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। विश्व दिवस का विषय इंसानी आवाजों और चेहरों को बचाना संत पापा लियो के संदेश को दिखाता है और उस भावना को दिखाता है जिसमें आयोजक ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लोगों, समुदाय और देशों की जिंदगी पर इसके असर पर बातचीत करने के लिए अकादमी, संस्थानीय प्रतिनिधियों, हाईटेक एक्सपर्ट और पत्रकारों को बुलाया है। इसका उद्देश्य संत पापा की इस बात के जवाब में सोच विचार और बातचीत का एक पल होना है कि संचार के तोहफे को इंसानियत की सबसे गहरी सच्चाई के तौर पर संजो कर रखें। उधर यूक्रेन के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष कुलबोकास 13 और 14 मई को यूक्रेन में रूस की खास तौर पर तेज बमबारी के बारे में बताया और मानवतावादी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि उन पर जानबूझकर निशाना बनाया गया ताकि लोगों को मदद ना मिले। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: श्री धर्म अवृतों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है।
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: भैया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के उदार दान विभाग पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, इन दिनों हम वैटिकन के बारे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वैटिकन दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि यह कैथोलिक कलीसिया का गढ़ है। इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। वैटिकन में कई विभाग हैं जो इसे सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इनमें से कुछ के बारे हमने पिछले कार्यक्रमों में जानकारी प्राप्त की और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम वैटिकन के उदार दान विभाग पर चर्चा करेंगे। वैटिकन का उदार दान विभाग, जिसे प्रेरितिक उदारता का कार्यालय भी कहा जाता है, करुणा की एक खास अभिव्यक्ति है। यह पोप के नाम पर दुनिया के किसी भी हिस्से में गरीबों, कमजोर एवं बहिष्कृत लोगों तथा पीड़ितों की मदद करता है। यह जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए खुद पोप की पहल का हिस्सा है। विभाग की देखरेख के लिए एक अध्यक्ष होता है, जिनके मार्गदर्शन में यह दूसरे विभागों से संपर्क करता और अपनी गतिविधियों के जरिए विश्वव्यापी कलीसिया के चरवाहे के रूप में पोप की चिंता एवं सामीप्य को दान के माध्यम से प्रकट करता है। यह न केवल उन लोगों की मदद करता जो गरीब, बहिष्कृत एवं कमजोर हैं, बल्कि उन लोगों पर भी ध्यान देता है जो गंभीर मुसीबतों से प्रभावित हैं। इस समय वैटिकन उदार दान विभाग के अध्यक्ष मोनसिन्योर लुइस मरिंदी सान मार्टिन हैं। वैटिकन उदार दान विभाग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अनुदान राशि जमा करना। यह पोप के उदार कार्यों के लिए अनुदान राशि जमा करने के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग को पोप की प्रेरितिक आशीष या पेपल ब्लेसिंग देने का अधिकार है, जिसकी आमदनी चैरिटी कार्यों के लिए दान कर दी जाती है। दान जमा करने के अलावा उदार दान विभाग उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उत्तरदायी है और सुसमाचार के तर्क अनुसार दूसरों को मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है। गरीबों के लिए दान करना कलीसिया की एक विशेष चिंता है जो कलीसिया के शुरू से चली आ रही है। पोप इनोसेंट तृतीय, जिनका परमाध्यक्ष काल 1198 से 1216 के बीच था, अपने एक धम्म पत्र में दान का जिक्र उसके पहले से मौजूद होने के रूप में किया गया है। धन्य पोप ग्रेगोरी 10वें प्रेरितिक उदारता के कार्यालय की शुरुआत करने वाले पहले पोप थे, जिन्होंने 1271 से 1276 तक परमाध्यक्ष कार्यभार संभाला था और दान विभाग की जिम्मेदारियां तय की थी। पोप अलेक्जेंडर 5वें ने 1409 को प्रकाशित अपने एक धर्म अध्यादेश के साथ उदार दान कार्यालय के नियमों को व्यवस्थित किया। इस तरह संत पापाओं के लगातार देखभाल की वजह से विभाग हमेशा अपना काम जारी रखा। पोप के उदार दान विभाग के अध्यक्ष को एक महाधर्मदक्ष होने की गरिमा प्राप्त है। विभाग परमाध्यक्ष परिवार का हिस्सा है और इस तरह यह पोप के साथ धार्मिक समारोहों और आधिकारिक मुलाकातों में भाग लेता है। पोप लियो 13वें ने उदार दान कार्यालय को सौंपे गए दान इकट्ठा करने के कार्य के लिए प्रेरितिक आशीष या पेपल ब्लेसिंग देने का अधिकार दिया। पेपल ब्लेसिंग से जो राशि जमा होता है उसे पोप के उदार दान के लिए खर्च किया जाता है। पोप फ्रांसिस अक्सर कहा करते थे कि कलीसिया एक फील्ड हॉस्पिटल या खुले अस्पताल जैसा है। वैटिकन का उदार दान विभाग इसका इमरजेंसी रूम है, एक दयालु और करुणावान हाथ जो घावों पर मरहम पट्टी लगाने और कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हाल के दिनों में विभाग ने यूक्रेन और अन्य पीड़ित लोगों की मदद में विशेष ध्यान दिया है जो युद्ध की त्रासदी से जूझ रहे हैं। विभाग के पूर्व अध्यक्ष कार्डिनल कॉनराड क्रायस्की ने खतरा होने के बावजूद खुद यूक्रेन जाकर लोगों की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़े, दवाइयां और स्वच्छता की चीजें पहुंचाई हैं। वैटिकन करुणा दान विभाग मदर ऑफ मर्सी करुणा की माता क्लिनिक की सेवा उपलब्ध कराता है। यह एक ऐसी सुविधा है जो गरीबी, हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों या मुश्किल हालात में रहने वाले लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह क्लिनिक संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में दाहिनी ओर स्तंभों के नीचे स्थित है। यह हर साल लगभग 8,000 जरूरतमंदों को 15,000 से ज्यादा स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा शहर के आसपास के इलाकों में मोबाइल मेडिकल गाड़ियों के द्वारा कई तरह से मदद पहुंचाया जाता है। इस विशेष क्लिनिक का मिशन विभाग के मिशन अनुसार भाईचारे की भावना में सम्मान का गढ़ बनना है। वैटिकन उदार दान विभाग बेघर लोगों के नहाने और साफ सफाई के लिए भी सुविधाएं प्रदान करता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत हमने वैटिकन के उदार दान विभाग के बारे सुना। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप और अपनी ही समानता में बनाया, अर्थात मनुष्य में भी ज्ञान, स्वतंत्र इच्छा और प्रेम करने की शक्ति दी। मनुष्य को यौन शक्ति से संपन्न कर ईश्वर ने मनुष्य जाति को बनाए रखने के लिए उसके सहयोग को मनुष्य के लिए संभव बनाया। ईश्वर की इच्छा है कि वे पति पत्नी के प्यार के प्रतिफल हों। अतः विवाह ईश्वर की योजना है और विवाह में यौन संबंध ईश्वरीय योजना है। विवाह से बाहर किसी तरह का यौन संबंध नाजायज और पाप है, जिसे समाज भी स्वीकार नहीं करती। परंतु ईश्वर और समाज के नियम के विरुद्ध आज अनेकों लोग बिना विवाह किए शारीरिक संबंध रखते या एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। समाज की परवाह किए बिना अपनी खुशी या अपने स्वार्थ के लिए उठाया गया उनका गलत कदम भी सही ही लगने लगता है। व्यभिचार के पाप को वे पुण्य मान लेते हैं, पर जीवन के लंबे दौर में जब उन्हें गलती का एहसास होता है, तब तक पानी सर से ऊपर चढ़ चुका होता है। पाप कभी भी पाप से मिटाया नहीं जा सकता। पाप सिर्फ पश्चाताप के आंसुओं से ही मिटाया जा सकता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका पाप और पुण्य।
1: ला जल्दी से खाना दे दे, मुझे दुकान जल्दी पहुंचना है।
2: खाना भी तो तभी दूंगी ना जब खाना बना हो।
1: क्या, तो अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? तू सवेरे से अब तक क्या कर रही थी?
2: मैं भी कोई बैठी नहीं थी, सरोज को सुला रही थी, अभी अभी सोई है वो।
1: तुझे तो अपनी इस बिल्ली से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा होता तू उसे भी अपने पहले आदमी के पास छोड़ाती तो।
2: क्यों, अब मेरी बेटी तुम्हें खटकने लगी है क्या?
1: तेरी बेटी नहीं, अब तो तू भी खटकने लगी है।
2: ज्यादा भाव मत खाओ तुम। अपने पहले आदमी के पास चली जाऊंगी तो इस घर में पहले की तरह अकेले ही मरना तुम। फिर देखती हूँ तुम्हारे और इस घर के काम कौन करता है।
1: मुझे अपने पहले आदमी के दोष मत दिया कर तू। अगर ऐसा ही था तो उसे छोड़कर अपनी इस बिल्ली को लेकर तू मेरे पड़ोस में रहने क्यों चली आई थी?
2: ये तो मेरी मर्जी है कि मैं किस आदमी को छोड़ूं और किसके साथ रहूं। तुम बोलने वाले कौन होते हो?
1: अच्छा, मैंने तुझ पर दया करके तुझे अपने घर में रखा, सहारा दिया, और तू ही मुझे बातें सुनाती है। जबान खींच लूंगा तेरी।
2: अरे मर गए मेरी जबान खींचने वाले। ये मत सोचना तुम कि तुम मुझे डरा लोगे और मैं तुमसे दब जाऊंगी। वो आदमी मुझे दबा नहीं सका तो तुम्हारी क्या औकात है?
1: खबरदार, जब मेरे सामने पहले आदमी का नाम लिया तो। बात बात पर आज भी उसी आदमी की माला जपती है। दुकान पर सेठ मेरा रास्ता देख रहा होगा और इस औरत को झगड़ने से ही फुर्सत नहीं। अब खाना बना और अपनी इस लाडली पिल्ली के साथ तू ही खाना खा, मैं तो चला।
2: हाँ हाँ जाओ, मैं ही खाऊंगी।
3: क्यों सुरेश, आज तूने खाना खा कर आने में बहुत देर लगा दी।
1: क्या करूँ सेठ जी, मुझे तो इस औरत ने बहुत तंग कर दिया है। खाना बनाया ही नहीं और ऊपर से झगड़ा करने बढ़ गई। जब भी झगड़ा करती है पहले आदमी के पास जाने की धोस देती।
3: गलती तो तेरी ही है ना, जो तू उसके साथ रह रहा है। क्या जरूरत थी तुझे किसी आदमी की छोड़ी हुई औरत को अपने साथ रखने की?
1: मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ सेठ जी, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ।
3: ये बात अच्छी तरह से समझ ले सुरेश, गलत और अनैतिक काम करने वाला हमेशा ही परेशान रहता है। फिर एक औरत के अपने आदमी के होते हुए भी तूने उसे अपनी औरत बनाकर रखा हुआ है, तो ये तो पाप है ना। तू तो सीधे सीधे पाप कर रहा है और पाप का भागीदार बन रहा है।
1: आजकल इन बातों को कौन मानता है सेठ जी, बस अपने को आराम होना चाहिए। पाप पुण्य क्या है?
3: पाप और पुण्य से ही तो जिंदगी बिगड़ती और बनती है सुरेश। अब तुझे ही देख लो, पाप को पुण्य की तरह कर रहा है तू। इसलिए तो तुझे आराम नहीं है, तुझे शांति नहीं है, चैन नहीं है।
1: हाँ सेठ जी, मेरी जिंदगी में अब शांति और चैन का नाम ही नहीं है।
3: क्या तू इस बात को नहीं जानता कि पापी आदमी को कभी शांति नहीं मिलती? ये सब मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ, मगर तू है कि तुझे अपने पाप से भरी जिंदगी रास आ रही है, इसलिए तू उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। जबकि तू अपने घर वालों से कहकर एक अच्छी लड़की से अपनी शादी करके सुख से रह सकता है।
1: लेकिन सेठ जी, अब तो लगता है कि अब उसे छाकर भी छोड़ नहीं सकता।
3: क्यों, ऐसी क्या बात है?
1: क्योंकि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी।
3: एक बात याद रखना सुरेश, जब वो अपनी शादीशुदा आदमी की नहीं हुई, उसे छोड़कर तेरे साथ रहने लगी है, तो फिर वो तेरी क्या होगी? कल वो किसी और के साथ भी रह सकती है।
1: आपका कहना बिल्कुल सही है सेठ जी, उससे पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा।
3: उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में कहीं कुछ और गलत काम मत कर बैठना। बस उससे साफ साफ बात कर ले और ये ले पैसे, जाकर उस वो होटल में खाना खा कर।
1: ठीक है सेठ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं।

0: तुम्हें पता है जूलिया, आजकल अपना सुरेश बहुत परेशान रहता है।
1: अगर उसे पैसे की जरूरत है तो उसे पैसे देकर उसकी परेशानी खत्म कर दो।
0: बात अगर रुपए पैसों की होती तो मैं कब के उसकी परेशानी दूर कर चुका होता। बात तो उसे एक बच्चे की माँ विद्या की है, जिसे सुरेश ने अपने साथ रख रखा है।
1: ये सुरेश भी तो अजीब है। विद्या के आदमी ने उसे तलाक नहीं दिया और ना ही देना चाहता है, और विद्या अपने आदमी के साथ रहना नहीं चाहती, तो फिर ये सुरेश ऐसे पछड़े में क्यों पड़ा हुआ है? ऐसी हालत में वो और परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा?
0: मैंने भी उसे कई बार बहुत समझाया है, लेकिन उसके कुछ समझ में ही नहीं आता।
1: किसी दूसरे की औरत यानी कि एक पराई औरत के साथ रहकर सीधे सीधे वह पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है।
0: उसे बताया है मैंने।
1: उसे ये नहीं बताया कि अपने बाइबिल में जीसस ने क्या कहा है सेसिल, कि जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। लेकिन सुरेश तो सचमुच में उस औरत के साथ रहकर व्यभिचार कर रहा है।
0: मैंने उसे सब कुछ समझाया है जूलिया, लेकिन वह समझने को ही तैयार नहीं है। पाप करते हुए भी उसे यह नहीं पता कि वह पाप कर रहा है और ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी बन रहा है।
1: कुछ ऐसा ही हाल उस औरत विद्या का भी तो है, जो सुरेश के पाप में भागीदार बनी हुई है।
0: लेकिन दोनों को ही या तो उस पाप का एहसास नहीं है, या फिर दोनों ही समाज की परवाह किए बिना ही पाप का आनंद उठा रहे हैं।
1: लेकिन एक बात तो तय है सेसिल, कि पाप करते हुए और करके भी कुछ लोग समाज और कानून की सजा से बच जाते हैं, लेकिन ईश्वर के विधान की सजा ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बचा नहीं पाती।
0: तुम बिल्कुल ठीक कहती हो जूलिया, ऐसे लोगों को एक ना एक दिन सजा मिलकर ही रहती है।
1: ईश्वर की नाराजगी उन पर कहर बनकर टूट पड़ती है, जिसकी शुरुआत होती है उनके मन की शांति भंग होने से।
0: बिल्कुल, और शायद सुरेश और विद्या की शुरुआत तो हो चुकी है।
2: सेठ जी, सेठ जी।
0: सुरेश, क्या बात है, इतनी रात गए यहाँ?
1: और तुम इतने घबराए हुए क्यों?
2: मैंने विद्या और उसकी लड़की को मार डाला है मैडम।
0: क्या
1: क्या
0: ये तुम क्या कह रहे हो सुरेश, तुम होश में तो?
2: मैं होश में हूँ सेठ जी, रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मैं तंग आ गया था, इसलिए आज मैंने दोनों माँ बेटी को जलाकर मार डाला है।
1: ये तुमने क्या किया सुरेश? मर्डर? पता है तुमने क्या किया है?
2: मुझे पता है मैडम मैंने क्या किया है, मगर इसके सिवा मैं वो करता भी क्या सेठ जी, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था।
0: मगर उनकी जान लेने की जरूरत क्या थी तुझे, हाँ? तुझे तो एक पाप को मिटाने के लिए दूसरा पाप करना पड़ा। पाप कभी भी पाप से नहीं मिटाया जा सकता सुरेश।
1: हाँ सुरेश, पाप केवल प्रायश्चित से ही मिटता है।
2: मुझे बचा लो सेठ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है सेठ जी, पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी सेठ जी।
1: सुरेश, अब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, और ये प्रायश्चित तुम पुलिस से बचकर या भागकर नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करके ही कर सकते हो।
0: हाँ सुरेश, तुम कब तक पुलिस से भागते फिरोगे और अपनी शांति भंग करते रहोगे? एक ना एक दिन तुम पकड़े ही जाओगे।
1: हाँ सुरेश, तुम पहले ही कई गलतियां कर चुके हो, अब तुम्हें अपनी गलतियों पर पछताने का मौका मिला है, उसका फायदा उठाओ। अगर तुम अपने पापों पर सच्चे हृदय से पछताओगे तो ईश्वर तुम्हें जरूर माफ करेंगे और तुम्हें अनंत शांति देंगे। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो।
2: आप लोग ठीक कहते हैं, पापी को अपने पाप की सजा हर हालत में भोगना पड़ती है। वो समाज और कानून की नज़र में और सजा से भले ही बच जाए, लेकिन ईश्वर की नज़र और सजा से वो कभी नहीं बच सकता। सेठ जी, आप पुलिस को बुला लो।
0: ठीक है, मैं थाने फोन करता हूँ।
3: पाप और पुण्य, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे दिव्या शूलिया, नलिनी गहलोत, पद्माकर मूल्ले और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत वैटिकन के उदार दान विभाग पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, इन दिनों हम वैटिकन के बारे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। वैटिकन दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है क्योंकि यह कैथोलिक कलीसिया का गढ़ है। इसकी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। वैटिकन में कई विभाग हैं जो इसे सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इनमें से कुछ के बारे हमने पिछले कार्यक्रमों में जानकारी प्राप्त की और इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम वैटिकन के उदार दान विभाग पर चर्चा करेंगे। वैटिकन का उदार दान विभाग, जिसे प्रेरितिक उदारता का कार्यालय भी कहा जाता है, करुणा की एक खास अभिव्यक्ति है। यह पोप के नाम पर दुनिया के किसी भी हिस्से में गरीबों, कमजोर एवं बहिष्कृत लोगों तथा पीड़ितों की मदद करता है। यह जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए खुद पोप की पहल का हिस्सा है। विभाग की देखरेख के लिए एक अध्यक्ष होता है, जिनके मार्गदर्शन में यह दूसरे विभागों से संपर्क करता और अपनी गतिविधियों के जरिए विश्वव्यापी कलीसिया के चरवाहे के रूप में पोप की चिंता एवं सामीप्य को दान के माध्यम से प्रकट करता है। यह न केवल उन लोगों की मदद करता जो गरीब, बहिष्कृत एवं कमजोर हैं, बल्कि उन लोगों पर भी ध्यान देता है जो गंभीर मुसीबतों से प्रभावित हैं। इस समय वैटिकन उदार दान विभाग के अध्यक्ष मोनसिन्योर लुइस मरिन दी सान मार्टिन हैं। वैटिकन उदार दान विभाग का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है अनुदान राशि जमा करना। यह पोप के उदार कार्यों के लिए अनुदान राशि जमा करने के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग को पोप की प्रेरितिक आशीष या पेपल ब्लेसिंग देने का अधिकार है, जिसकी आमदनी चैरिटी कार्यों के लिए दान कर दी जाती है। दान जमा करने के अलावा उदार दान विभाग उसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए भी उत्तरदायी है और सुसमाचार के तर्क अनुसार दूसरों को मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है। गरीबों के लिए दान करना कलीसिया की एक विशेष चिंता है जो कलीसिया के शुरू से चली आ रही है। पोप इनोसेंट तृतीय, जिनका परमाध्यक्ष काल 1198 से 1216 के बीच था, अपने एक धम्म पत्र में दान का जिक्र उसके पहले से मौजूद होने के रूप में किया गया है। धन्य पोप ग्रेगोरी 10वें प्रेरितिक उदारता के कार्यालय की शुरुआत करने वाले पहले पोप थे, जिन्होंने 1271 से 1276 तक परमाध्यक्ष कार्यभार संभाला था और दान विभाग की जिम्मेदारियां तय की थी। पोप अलेक्जेंडर 5वें ने 1409 को प्रकाशित अपने एक धर्म अध्यादेश के साथ उदार दान कार्यालय के नियमों को व्यवस्थित किया। इस तरह संत पापाओं के लगातार देखभाल की वजह से विभाग हमेशा अपना काम जारी रखा। पोप के उदार दान विभाग के अध्यक्ष को एक महाधर्माध्यक्ष होने की गरिमा प्राप्त है। विभाग परमाध्यक्ष परिवार का हिस्सा है और इस तरह यह पोप के साथ धार्मिक समारोहों और आधिकारिक मुलाकातों में भाग लेता है। पोप लियो 13वें ने उदार दान कार्यालय को सौंपे गए दान इकट्ठा करने के कार्य के लिए प्रेरितिक आशीष या पेपल ब्लेसिंग देने का अधिकार दिया। पेपल ब्लेसिंग से जो राशि जमा होता है उसे पोप के उदार दान के लिए खर्च किया जाता है। पोप फ्रांसिस अक्सर कहा करते थे कि कलीसिया एक फील्ड हॉस्पिटल या खुले अस्पताल जैसा है। वैटिकन का उदार दान विभाग इसका इमरजेंसी रूम है, एक दयालु और करुणावान हाथ जो घावों पर मरहम पट्टी लगाने और कम भाग्यशाली लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हाल के दिनों में विभाग ने यूक्रेन और अन्य पीड़ित लोगों की मदद में विशेष ध्यान दिया है जो युद्ध की त्रासदी से जूझ रहे हैं। विभाग के पूर्व अध्यक्ष कार्डिनल कॉनराड क्रायस्की ने खतरा होने के बावजूद खुद यूक्रेन जाकर लोगों की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, कपड़े, दवाइयां और स्वच्छता की चीजें पहुंचाई हैं। वैटिकन करुणा दान विभाग मदर ऑफ मर्सी करुणा की माता क्लिनिक की सेवा उपलब्ध कराता है। यह एक ऐसी सुविधा है जो गरीबी, हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों या मुश्किल हालात में रहने वाले लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। यह क्लिनिक संत पेट्रस महागिरजाघर के प्रांगण में दाहिनी ओर स्तंभों के नीचे स्थित है। यह हर साल लगभग 8,000 जरूरतमंदों को 15,000 से ज्यादा स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा शहर के आसपास के इलाकों में मोबाइल मेडिकल गाड़ियों के द्वारा कई तरह से मदद पहुंचाया जाता है। इस विशेष क्लिनिक का मिशन विभाग के मिशन अनुसार भाईचारे की भावना में सम्मान का गढ़ बनना है। वैटिकन उदार दान विभाग बेघर लोगों के नहाने और साफ सफाई के लिए भी सुविधाएं प्रदान करता है। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत हमने वैटिकन के उदार दान विभाग के बारे सुना। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका पाप और पुण्य। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, हम पवित्र बाइबल में पाते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप और अपनी ही समानता में बनाया, अर्थात मनुष्य में भी ज्ञान, स्वतंत्र इच्छा और प्रेम करने की शक्ति दी। मनुष्य को यौन शक्ति से संपन्न कर ईश्वर ने मनुष्य जाति को बनाए रखने के लिए उसके सहयोग को मनुष्य के लिए संभव बनाया। ईश्वर की इच्छा है कि वे पति पत्नी के प्यार के प्रतिफल हों। अतः विवाह ईश्वर की योजना है और विवाह में यौन संबंध ईश्वरीय योजना है। विवाह से बाहर किसी तरह का यौन संबंध नाजायज और पाप है, जिसे समाज भी स्वीकार नहीं करती। परंतु ईश्वर और समाज के नियम के विरुद्ध आज अनेकों लोग बिना विवाह किए शारीरिक संबंध रखते या एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। समाज की परवाह किए बिना अपनी खुशी या अपने स्वार्थ के लिए उठाया गया उनका गलत कदम भी सही ही लगने लगता है। व्यभिचार के पाप को वे पुण्य मान लेते हैं, पर जीवन के लंबे दौर में जब उन्हें गलती का एहसास होता है, तब तक पानी सर से ऊपर चढ़ चुका होता है। पाप कभी भी पाप से मिटाया नहीं जा सकता। पाप सिर्फ पश्चाताप के आंसुओं से ही मिटाया जा सकता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है माइकल होजेस की लिखी नाटिका पाप और पुण्य।
1: ला जल्दी से खाना दे दे, मुझे दुकान जल्दी पहुंचना है।
2: खाना भी तो तभी दूंगी ना जब खाना बना हो।
1: क्या, तो अभी तक तूने खाना नहीं बनाया? तू सवेरे से अब तक क्या कर रही थी?
2: मैं भी कोई बैठी नहीं थी, सरोज को सुला रही थी, अभी अभी सोई है वो।
1: तुझे तो अपनी इस बिल्ली से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा होता तू उसे भी अपने पहले आदमी के पास छोड़ाती तो।
2: क्यों, अब मेरी बेटी तुम्हें खटकने लगी है क्या?
1: तेरी बेटी नहीं, अब तो तू भी खटकने लगी है।
2: ज्यादा भाव मत खाओ तुम। अपने पहले आदमी के पास चली जाऊंगी तो इस घर में पहले की तरह अकेले ही मरना तुम। फिर देखती हूँ तुम्हारे और इस घर के काम कौन करता है।
1: मुझे अपने पहले आदमी के दोष मत दिया कर तू। अगर ऐसा ही था तो उसे छोड़कर अपनी इस बिल्ली को लेकर तू मेरे पड़ोस में रहने क्यों चली आई थी?
2: ये तो मेरी मर्जी है कि मैं किस आदमी को छोड़ूं और किसके साथ रहूं। तुम बोलने वाले कौन होते हो?
1: अच्छा, मैंने तुझ पर दया करके तुझे अपने घर में रखा, सहारा दिया, और तू ही मुझे बातें सुनाती है। जबान खींच लूंगा तेरी।
2: अरे मर गए मेरी जबान खींचने वाले। ये मत सोचना तुम कि तुम मुझे डरा लोगे और मैं तुमसे दब जाऊंगी। वो आदमी मुझे दबा नहीं सका तो तुम्हारी क्या औकात है?
1: खबरदार, जब मेरे सामने पहले आदमी का नाम लिया तो बात बात पर आज भी उसी आदमी की माला जपती है। दुकान पर सेठ मेरा रास्ता देख रहा होगा और इस औरत को झगड़ने से फुर्सत नहीं। अब खाना बना और अपनी इस लाडली पिल्ली के साथ तू ही खाना खा, मैं तो चला।
2: हाँ हाँ जाओ, मैं ही खाऊंगी।
3: क्यों सुरेश, आज तूने खाना खा कर आने में बहुत देर लगा दी।
1: क्या करूँ सेठ जी, मुझे तो इस औरत ने बहुत तंग कर दिया है। खाना बनाया ही नहीं और ऊपर से झगड़ा करने बैठ गई। जब भी झगड़ा करती है पहले आदमी के पास जाने की धोस देती।
3: गलती तो तेरी ही है ना, जो तू उसके साथ रह रहा है। क्या जरूरत थी तुझे किसी आदमी की छोड़ी हुई औरत को अपने साथ रखने की?
1: मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ सेठ जी, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ।
3: ये बात अच्छी तरह से समझ ले सुरेश, गलत और अनैतिक काम करने वाला हमेशा ही परेशान रहता है। फिर एक औरत के अपने आदमी के होते हुए भी तूने उसे अपनी औरत बनाकर रखा हुआ है, तो ये तो पाप है ना। तू तो सीधे सीधे पाप कर रहा है और पाप का भागीदार बन रहा है।
1: आजकल इन बातों को कौन मानता है सेठ जी, बस अपने को आराम होना चाहिए। पाप पुण्य क्या है?
3: पाप और पुण्य से ही तो जिंदगी बिगड़ती और बनती है सुरेश। अब तुझे ही देख लो, पाप को पुण्य की तरह कर रहा है तू। इसलिए तो तुझे आराम नहीं है, तुझे शांति नहीं है, चैन नहीं है।
1: हाँ सेठ जी, मेरी जिंदगी में अब शांति और चैन का नाम ही नहीं है।
3: क्या तू इस बात को नहीं जानता कि पापी आदमी को कभी शांति नहीं मिलती? ये सब मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ, मगर तू है कि तुझे अपने पाप से भरी जिंदगी रास आ रही है, इसलिए तू उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। जबकि तू अपने घर वालों से कहकर एक अच्छी लड़की से अपनी शादी करके सुख से रह सकता है।
1: लेकिन सेठ जी, अब तो लगता है कि अब उसे छाकर भी छोड़ नहीं सकता।
3: क्यों, ऐसी क्या बात है?
1: क्योंकि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी।
3: एक बात याद रखना सुरेश, जब वो अपनी शादीशुदा आदमी की नहीं हुई, उसे छोड़कर तेरे साथ रहने लगी है, तो फिर वो तेरी क्या होगी? कल वो किसी और के साथ भी रह सकती है।
1: आपका कहना बिल्कुल सही है सेठ जी, उससे पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा।
3: उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में कहीं कुछ और गलत काम मत कर बैठना। बस उससे साफ साफ बात कर ले और ये ले पैसे, जाकर उस वो होटल में खाना खा कर।
1: ठीक है सेठ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं।
3: तुम्हें पता है जूलिया, आजकल अपना सूरज बहुत परेशान रहता है।
2: अगर उसे पैसे की जरूरत है तो उसे पैसे देकर उसकी परेशानी खत्म कर दो।
3: बात अगर रुपए पैसों की होती तो मैं कब के उसकी परेशानी दूर कर चुका होता। बात तो उसे एक बच्चे की माँ विद्या की है, जिसे सुरेश ने अपने साथ रख रखा है।
2: ये सुरेश भी तो अजीब है, विद्या के आदमी ने उसे तलाक नहीं दिया और ना ही देना चाहता है, और विद्या अपने आदमी के साथ रहना नहीं चाहती, तो फिर ये सुरेश ऐसे पछड़े में क्यों पड़ा हुआ है? ऐसी हालत में वो और परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा?
3: मैंने भी उसे कई बार बहुत समझाया है, लेकिन उसके कुछ समझ में ही नहीं आता।
2: किसी दूसरे की औरत यानी कि एक पराई औरत के साथ रहकर सीधे सीधे वह पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है।
3: उसे बताया है मैंने।
2: उसे ये नहीं बताया कि अपने बाइबिल में जीसस ने क्या कहा है सेसिल, कि जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। लेकिन सुरेश तो सचमुच में उस औरत के साथ रहकर व्यभिचार कर रहा है।
3: मैंने उसे सब कुछ समझाया है जूलिया, लेकिन वह समझने को ही तैयार नहीं है। पाप करते हुए भी उसे ये नहीं पता कि वो पाप कर रहा है और ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी बन रहा है।
2: कुछ ऐसा ही हाल उस औरत विद्या का भी तो है, जो सुरेश के पाप में भागीदार बनी हुई है।
3: लेकिन दोनों को ही या तो उस पाप का एहसास नहीं है, या फिर दोनों ही समाज की परवाह किए बिना ही पाप का आनंद उठा रहे हैं।
2: लेकिन एक बात तो तय है सेसिल, कि पाप करते हुए और करके भी कुछ लोग समाज और कानून की सजा से बच जाते हैं, लेकिन ईश्वर के विधान की सजा ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बचा नहीं पाती।
3: तुम बिल्कुल ठीक कहती हो जूलिया, ऐसे लोगों को एक ना एक दिन सजा मिलकर ही रहती है।
2: ईश्वर की नाराजगी उन पर कहर बनकर टूट पड़ती है, जिसकी शुरुआत होती है उनके मन की शांति भंग होने से।
3: बिल्कुल, और शायद सुरेश और विद्या की शुरुआत तो हो चुकी है।
1: सेठ जी, सेठ जी।
3: सुरेश, क्या बात है, इतनी रात गए यहाँ?
2: और तुम इतने घबराए हुए क्यों?
1: मैंने विद्या और उसकी लड़की को मार डाला है मैडम।
3: क्या
2: क्या?
3: ये तुम क्या कह रहे हो सुरेश, तुम होश में तो?
1: मैं होश में हूँ सेठ जी, रोज रोज की लड़ाई झगड़े से मैं तंग आ गया था, इसलिए आज मैंने दोनों माँ बेटी को जला कर मार डाला है।
2: ये तुमने क्या किया सुरेश? मर्डर? पता है तुमने क्या किया है?
1: मुझे पता है मैडम मैंने क्या किया है, मगर इसके सिवा मैं वो करता भी क्या? सेठ जी, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था।
3: मगर उनकी जान लेने की जरूरत क्या थी तुझे? हा? तुझे तो एक पाप को मिटाने के लिए दूसरा पाप करना पड़ा। पाप कभी भी पाप से नहीं मिटाया जा सकता सुरेश।
2: हाँ सुरेश, पाप केवल प्रायश्चित से ही मिटता है।
1: मुझे बचा लो सेठ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है सेठ जी, पुलिस मुझे ढूंढ रही होगी सेठ जी।
2: सुरेश, अब तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, और ये प्रायश्चित तुम पुलिस से बचकर या भागकर नहीं, बल्कि अपने आप को पुलिस के हवाले करके ही कर सकते हो।
3: हाँ सुरेश, तुम कब तक पुलिस से भागते फिरोगे और अपनी शांति भंग करते रहोगे? एक ना एक दिन तुम पकड़े ही जाओगे।
2: हाँ सुरेश, तुम पहले ही कई गलतियां कर चुके हो, अब तुम्हें अपनी गलतियों पर पछताने का मौका मिला है, उसका फायदा उठाओ। अगर तुम अपने पापों पर सच्चे हृदय से पछताओगे तो ईश्वर तुम्हें जरूर माफ करेंगे और तुम्हें अनंत शांति देंगे। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो।
1: आप लोग ठीक कहते हैं, पापी को अपने पाप की सजा हर हालत में भोगना पड़ती है। वो समाज और कानून की नज़र में और सजा से भले ही बच जाए, लेकिन ईश्वर की नज़र और सजा से वो कभी नहीं बच सकता। सेठ जी, आप पुलिस को बुला लो।
3: ठीक है, मैं थाने फ़ोन करता हूँ।
0: पाप और पुण्य, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे दिव्या शूलिया, नलिनी गहलोत, पद्माकर मूल्ले और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।